Welcome back after this beautiful song. Welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM. आप सुन रहे हैं right now. मेरा नाम है अभी और आज सुबह मैं आपके साथ रहूंगा. Welcome to this beautiful start of the weekend. काफी सारे beautiful songs मैं सिर्फ आपके लिए play करने वाला हूँ. आपके लिए dedicate करने वाला हूँ. So stay tuned with me.

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

Welcome back after yet another beautiful song on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है Abby and of course 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा. मतलब Sunrise Radio आप काफी सारे मीडियम के थ्रू भी सुन सकते हैं. I hope आपको पता है. Well, DAB के जरिए आप सुन सकते हैं in Manchester. At the same time दुनिया के किसी भी कोने में आपने सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है and then there you go. इंटरनेट के जरिए आप कहीं भी सुन सकते हैं. और हमारी वेबसाइट है ना, सो www.sunrisevideo.fm पे लॉगिन कीजिएगा. सारे अपडेट्स, अपकमिंग इवेंट्स, सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं. एट द सेम टाइम रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं. सो कीप दैट इन माइंड एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें।

वेलकम बैक आफ्टर द क्लासिक फ्लैशबैक। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि इन गानों को ना कोई भी नहीं बीट कर सकता, इसीलिए कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यार, काफी एंजॉय किया मैंने और आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news और the beam, beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा। So stay tuned with me. I'll see you on the other side.

वेलकम टू येट अनदर ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। इस गाने को अपने पसंद किया होगा ऐसी मैं आशा कर देता हूँ। मेरा नाम है एबी एंड ऑफकोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और इस आवर में भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मनोरंजन किया जाएगा, अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

Once again, welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. आशा करता हूँ कि इस वीकेंड की शुरुआत आप काफ़ी enjoy कर रहे हैं, मतलब रिलैक्स भी करना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम वीकडेज में नहीं कर सकते, काम के टाइम पे नहीं कर सकते. सो आई थिंक एक लिस्ट अगर हम बनाते हैं ना, छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, छोटे छोटे काम हो सकते हैं, अगर उन कामों को एक स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम में अगर हम फिनिश करते हैं ना, तो पूरे हफ्ते के लिए आई थिंक हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं. Just a thought. And of course, the next song is specially dedicated to you.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने

0: वेलकम बैक आफ्टर द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम, नथिंग लाइक द गोल्डन ओल्डीज। पर राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, व्हिच इज आफ्टर द न्यूज़, और तभी इन ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा, कहीं ना आप जाएगा। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस आवर, स्टे ट्यून्ड।
1: नहीं नहीं नहीं,
2: मेरी आंखों में देखो लाली,

इस आवर के तीसरे घंटे में आपका स्वागत है एंड वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. ऑफ कोर्स मेरा नाम है अभी और आज 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. दिस इज द सेकंड लास्ट आवर ऑफ माई शो. एंजॉय कीजिएगा इस वीकेंड की शुरुआत को, इस सुबह की शुरुआत को और सनराइज रेडियो पर प्ले हो रहे हैं इन गानों को. द नेक्स्ट सॉन्ग स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

Welcome back after this beautiful song, only on Sunrise Radio 103.2 FM. काफी मधुर गाना था यार, I just loved it. Only on Sunrise Radio 103.2 FM पर आप सुन रहे हैं इन हसीन गानों को. मेरा नाम है एबी एंड ऑफ कोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. अगला गाना सिर्फ आपके लिए है, डेडिकेटेड.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: 24 hours a day. Sunrise Radio.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: You know something?
1: क्या?
0: I love you. Oh, I really love you.
1: मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बेहद प्यार करती हूँ.

मॉर्निंग शो के आखिरी घंटे में आपका स्वागत है। सनराइज रेडियो 103.2 एफएम ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं राइट नाउ। हीट ऑफ द आवर के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर। मेरा नाम है अभी, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा, विच मीन्स दिस इज द लास्ट आवर ऑफ दिस शो। कहीं ना जाइएगा, काफी सारा ब्यूटीफुल म्यूजिक आएगा इस आवर में भी। द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

0: बिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। जस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मुझे भी बहुत पसंद आ गया। मतलब ऐसे गाने होते हैं कि सबको कभी कभी पसंद नहीं आते हैं, पर यू नो यू जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग फॉर दिस सॉन्ग, सो दिस वॉज वन फॉर मी। और इसी नोट पर अगला गाना सिर्फ आपके लिए डेडिकेट किया।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 0127-4288-252 पर कॉल करें। 24 hours a day.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था। काफी मजा आ गया मुझे और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी काफी मजा आ गया इन गानों को सुनकर। वेल राइट नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो क्योंकि द नेक्स्ट प्रेजेंटर विल बी विद यू। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, योर लव्ड वंस और मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिएगा, उनका हाल चाल पूछिएगा। गुड बाय।

0: हजारों दुआओं मोहब्बतों चाहतों और खुशियों के लाजवाल खजानों की ख्वाहिश के साथ नाहिद चट्ठा आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेकर हाजिर है। ऐसा मैं आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 एफएम एंड 103.2 एफएम पर अक्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर। डेप पर आप सुन रहे हैं कीतली इल्कली स्किप्टन लीड्स हैलिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर में ब्लैकबर्न बर्नली डार्विन नेल्सन एंड एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में। जिनाब हम आपकी खिदमत में सनराइज रेडियो की नशरियात जल्द ही लेकर आ रहे हैं डाबी में। जी हाँ, डाबी में भी आप जल्द ही सुनेंगे सनराइज रेडियो की नशरियात। लेकिन जहाँ पर अभी हमारी रेडियो की नशरियात नहीं पहुँची हैं वहाँ पर आप सुन सकते हैं जनाब ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर www.sunriseradio.fm या फिर www.sunrise.radio पर। जी हाँ, एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे लाइव नशरियात सुन सकते हैं। जनाब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे खूबसूरत वेदर। जी हाँ, इस खूबसूरत मौसम में आपके प्लान्स भी होंगे, कहीं बाहर जा रहे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। तो क्या क्या प्लान्स हैं? बाहर जाना है, पिकनिक के प्लान्स हैं। मेरा तो पिकनिक का प्लान बन रहा था लेकिन पिकनिक का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे एक फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो गई और फिर हम ने सोचा कि चलो फिर कभी चले जाएंगे। लेकिन उम्मीद है तुसी ठीक होगे, इन्जॉय करोगे। वो कहते हैं ना, आज फिर ओदा मैसेज आया हुन तबीयत कैसी है। आज फिर ओदा मैसेज आया हुन तबीयत कैसी है। जी कर दाए रिप्लाई कर दा, पूछती रही तो बच जाएंगे। जी हाँ, पूछती रही तो बच जाएंगे। वाकई किसी का हाल पूछना अच्छा होता है और आप हमें एक दूसरे का, अपने सिबलिंग्स का, अपने बहन भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्त अहबाब का और जानने वालों का, सबका हाल चाल पूछते रहना चाहिए, सबकी खैर खबर रखनी चाहिए। इससे भी बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है जनाब। अब हम आपको बताते हैं कि प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले तो हमारा हिट ऑफ द आवर होगा। हिट ऑफ द आवर के बाद हम बढ़ेंगे अपने उस गीत की जानेब जो कि हमने लाइनअप किया होगा आपके लिए और जो कि आपकी फरमाइश होगी। पहले आवर में गीत होंगे, कुछ शायरी होगी और फिर उसके बाद सेकंड आवर में भी यही रिपीट होगा। थर्ड आवर में हमारा डिस्कशन आवर होता है, हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे और इसी तरह से ये प्रोग्राम के जो तीन घंटे हैं 11 से 2 बजे तक आपके और मेरे साथ इकट्ठे हंसते खेलते ज़िंदगी के खूबसूरत तीन घंटे बन जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि बढ़ते हैं हम अपने हिट ऑफ द आवर की जानेब और फिर उसकी बात आपसे होती है मुलाकात। सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: तुम आ गए हो, नूर आ गया है। बड़ी अब जो भी हो रहा था उससे पहले, जो भी जिंदगी कैसी जा रही थी वैसी जा रही थी। गाने की क्या ही बात है, बहुत ही खूबसूरत हसीन गीत आपने सुना, उम्मीद है इंजॉय भी किया होगा। थैंक यू वेरी मच वाजिद फॉर योर टेलीफोन कॉल, आपकी बात आपसे बात करके अच्छा लगा है। आपको एक चंद अशआर सुनाती हूँ, उसके बाद हमारा ब्रेक का टाइम हो जाएगा, इसलिए कोई गीत की तरफ नहीं बढ़ रही हूँ। चलो तुम साथ मत देना, चलो तुम साथ मत देना, मुझे बेशक भुला देना। चलो तुम साथ मत देना, मुझे बेशक भुला देना, नए सपने सजा लेना, नए रिश्ते बना लेना, भुला लेना सभी वादे, सभी कस्में सभी नाते, तुम्हें जाना इजाज़त है, तुम्हें जाना इजाज़त है, जो दिल चाहे वो सब करना, मगर अब तुम किसी से भी अधूरा प्यार मत करना। तुम्हें जाना इजाज़त है, जो दिल चाहे वो सब करना, मगर अब तुम किसी से भी अधूरा प्यार मत करना, है ना। ऐ नहीं चंगी गल भाई, अधूरा प्यार नहीं करना चाहिए, करना है तो पूरा करो, नहीं तो ना करो, साड़ी तरह। तो ऐसा है कि हम कर लेते हैं टाइम चेक, और टाइम चेक के बाद हम बढ़ेंगे अपने कमर्शियल ब्रेक की जानेब। देखते हैं जी हमारी स्टूडियो की घड़ियां हमें क्या टाइम बता रही हैं।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: सभी इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं ब्रेडफोर्ड और उसके मुजाफात में 11:12, जो कि अभी कुछ ही सेकंड में 13 मिनट हो जाएंगे। सो एट द मोमेंट इट्स 12:11। बढ़ते हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की जानेब। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे दोबारा बात होती है, हमारे साथ रहिएगा, संग संग रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।

0: कफ्सिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

हाय रब्बा प्यार दिया मजबूरिया। कहते हैं ना, सजना जे तू हासे दित्ते, सजना जे तू हासे दित्ते, दुख भी अच्छे खासे दित्ते। लोका ने ते गाली कीती, लोका ने ते गाली कीती, तू तो ये खोल खुलासे दित्ते। की ख्याल है जनाब, इस पोइट्री दे नाल ही वधने आ एक पंजाबी गीत दी जाने। मजा ना आया तो पैसे वापस।

I'm sorry, Samin, ये वाला नसीबुलाल का गीत गलती से लग गया. ये वाला गाना मैंने नहीं सोचा था, मैंने समझा था ये दूसरा गीत है. I'm really sorry जिनको ये थोड़ा सा उस तरह से लगा हो गीत. मैं आपकी नसीबुलाल का ही दूसरा गीत आपकी खिदमत में पेश करती हूँ.

नहीं सजना सूल प्यार दे, तकना जे नहीं सानू गोली मार दे। हाय हाय चलिया इश्क व्यापार नहीं हुंदा, चलिया इश्क व्यापार नहीं हुंदा, शर्तां लाके प्यार नहीं हुंदा, हासे दे के होके लैने, हासे दे के होके लैने, सौखा कारोबार नहीं हुंदा, मंगन जान ते देनी पैंदी, मंगन जान ते देनी पैंदी, सजना नो इनकार नहीं हुंदा। जी जमीन सजना नो इनकार नहीं हुंदा। ते असी इस तरह करने आ हुन के वदने अपने कमर्शियल ब्रेक दी जानेब, और कमर्शियल ब्रेक के बाद जमीन हमारी होगी इवेंट स्टार, यानी आफ्टर इवेंट स्टार वी विल बी बैक विद अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक जो कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। आज मौसम बड़ा बेईमान है। हाँ जी, कहीं कुछ कंट्रीज़ में तो ऐसा होता है जब बादल आए, बारिश आए, हवा चले, लोग समझते हैं बहुत खूबसूरत बेईमान मौसम हो गया, लेकिन असी बेचारे धुप देख के बेईमान मौसम मना लेने। तो यही बात है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बहुत खूबसूरत मौसम है, इसके हवाले से गीत सुनेंगे। पहले बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानेब, कमर्शियल ब्रेक के बाद जी इवेंट स्टारी, और फिर उसके बाद आज मौसम बड़ा बेईमान है सुनेंगे, हमारे साथ रहिएगा।

जी सामीन, इंतहाई खूबसूरत गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आपको पसंद आया होगा। नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल का, आपसे बात करके हमेशा की तरह अच्छा लगा। तो जी अगला जो गीत है वो भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगी। तो क्या है कि मेरी तारीफ़ क्या करती वाजिद भाई, आपने शुरू शुरू में ही आपने कह दिया कि आपको पंजाबी पोइट्री अच्छी लगती है, तो मैनू पंजाबी पोइट्री के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो एक और पोइट्री पंजाबी की, ख़ास तौर पे वाजिद भाई आपकी समातों की नज़र और मेरे तमाम लिसनर्स की। कहते हैं कि कल्या रहना पैंदा है, कल्या रहना पैंदा है, दुख भी सहना पैंदा है, जे हो जावे मुहब्बत ते अना नु खोना पैंदा है, कदी कदार ते सजना हथों जलील भी होना पैंदा है। कदी कदार ते सजना हथों जलील भी होना पैंदा है, मन नु साफ रखन लई मन नु मारना पैंदा है। पंजाबी ये एक इतने वो मंझे हुए शायर नहीं है, लेकिन उनकी ये जो जलील भी होना पैंदा है, इस वजह से मैंने ना ये चूज किया, मैं कहीं ये तो जरूर सुनाऊंगी। तो ये तो जनाब अब ओखली में सर दिया तो धमकों का क्या डर, अब पंगा ले आए तो फिर सहो भी जलील भी हो वो फिर। तो ऐसा है कि हमारा अगला जो गीत है वो है जनाब वो भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, अब क्या मिसाल दूँ, बहुत खूबसूरत गीत, सुनिएगा।

0: अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। भानु जी आपकी टेलीफोन कॉल आ रही है, पहले भी आ रही थी तो मैं दूसरी लाइन पे बिजी थी। प्लीज़ जब मैं अब ब्रेक पर जाऊंगी प्लीज़ आप मुझे ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, क्योंकि जब अभी आपकी कॉल आई तो गीत ख़त्म हो रहा था तो वो भी फिर मैं ले नहीं पाई। तो सामीन अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले चंद अशआर उर्दू के सुनाती हूँ। चलो अब ऐसा करते हैं सितारे बांट लेते हैं, चलो अब ऐसा करते हैं सितारे बांट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है, मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं खसारे बांट लेते हैं। हाय हाय। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पे कदम रख कर अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं उनको, मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं उनको इकट्ठे बैठकर सारे के सारे बांट लेते हैं। जी ज़मीन, इसके साथ हम बढ़ते हैं टाइम चेक की जानिब।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां सामने बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 11:45 यानी कि 11:45 यानी कि 11:45 यानी कि 11:45। जी हाँ, इसके साथ ही बढ़ते हैं हम अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और कमर्शियल ब्रेक के बाद आपके लिए फ्लैशबैक गीत होगा और उसके बाद हाजिरी होती है दोबारा।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

अपनी आंखों में बसाकर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, है ना भी ना करो। अच्छा अब ऐसा करते हैं कि हम लगाते हैं, बल्कि ट्रैक ऑन करते हैं एक भड़कता हुआ बानो जी आपके लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह, और बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके। ऐसा करते हैं कि आपके लिए बोलियां लगाते हैं उसकी इब्रारुल हक की, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। तो बोलियां सुनते हैं हम सब। चौधरी मुजफ्फर जी, आई एम रियली सॉरी आपकी कॉल मिस हो गई, क्योंकि हम दूसरी लाइन पर बिजी थे। तो आप दोबारा फ़ोन कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो बढ़ते हैं इब्रारुल हक की बोलियों की जानिब। इंजॉय कीजिएगा।

0: जी हाँ सामीर, आपने सुना इब्रारुल हक को और उम्मीद है आपने ज़रूर इसको इंजॉय भी किया होगा। इब्रारुल हक की आवाज़ की क्या ही बात है और उनके गीत भी बहुत मज़े भड़कीले और पुरजोश हुआ करते हैं। चौधरी मुजफ्फर जी, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तमाम अपने दोस्तों को सलाम कहा है और साथ में ख़ास तौर पर आमिर शहजाद जी को उन्होंने कहा है कि सलाम ज़रूर पेश किया जाए। तो आमिर शहजाद जी, आपको अस्सलामुअलैकुम अगर आप सुन रहे हैं, और तमाम चौधरी मुजफ्फर साहब के दोस्तों और दुश्मनों सबको अस्सलामुअलैकुम जी, सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। चौधरी मुजफ्फर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल का। तो अब हमारा टाइम करीब पहुंच रहा है न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाने का, क्योंकि अगर हमने कोई ट्रैक आपकी खिदमत में पेश किया, कुछ गीत लगाया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी क्योंकि हमें वो न्यूज़ के लिए काटना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि आपको चंद अशआर सुना देते हैं और उसके बाद हम बढ़ेंगे न्यूज़ की जानिब। तो कहते हैं जी, मफरूर परिंदों में ये ऐलान गया है, मफरूर परिंदों में ये ऐलान गया है, सयाद नशे मन का पता जान गया है। यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं हूँ, यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं हूँ, अब आके मेरा मेरी तरफ ध्यान गया है। शीशे में भले उसने मेरी नकल उतारी, गौर कीजिएगा, ये मेरा बहुत पसंद का शेर है। शीशे में भले उसने मेरी नकल उतारी, खुश हूं कोई तो मुझे पहचान गया है। अब बात तेरी कुन पे है कुछ कर मेरे मौला, अब बात तेरी कुन पे है कुछ कर मेरे मौला, एक शख्स तेरे दर से परेशान गया है, एक शख्स तेरे दर से परेशान गया है, और ये नामो नसब जाके जमाने को बताओ, ये नामो नसब जाके जमाने को बताओ, दरवेश तो दस्तक से ही पहचान गया है। जी हाँ, बहुत बहुत सिंबॉलिक पोइट्री है और ये बहुत यंग पोइट है, बहुत ही खूबसूरत और गहराई वाली इनकी पोइट्री होती है, मुझे बहुत पसंद है इनकी पोइट्री। तो सामीन, इसके साथ हमारा टाइम हुआ चाहता है न्यूज़ ब्रेक का, चंद ही सेकंड्स में हम न्यूज़ की जानिब बढ़ेंगे। याद रहे, एक दफ़ा से फिर याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो FM 103.2 पर और 100.6 FM पर। इसके अलावा आप सुन रहे हैं डैप पर, ब्रेडफोर्ड में, कीथली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स में, हैलिफैक्स में और मैनचेस्टर में, ईस्ट लंकाशायर में आप सुनते हैं सनराइज रेडियो, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एकरिंगटन एंड मिल्टन कीन्स में। जनाब इसके अलावा हम डार्बी में भी जल्द ही पहुँचने वाले हैं, अगर जब तक नहीं पहुँचे आप सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट पर।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Centre at midday. French authorities have temporarily relaxed new EU border checks at the port of Dover to try and ease long queues. Passengers had faced enhanced checks, which led to five-hour wait times. Passports are now being stamped manually, which has helped reduce the backlog. London will be hotter than Athens, Amsterdam and Split today, with temperatures expected to hit 30 degrees Celsius. There are amber heat health alerts in place for the Midlands, East and South East England. That tells emergency services to be prepared for extra admissions. These people are taking part in an ultra marathon from London to Brighton.
3: Gonna struggle with the heat. I've never run in the heat really properly before, so that's gonna be quite tricky.
4: I just think we're gonna have to make sure we drink a lot more water than usual.
5: And go a little bit slower at the beginning.
6: This is the one where I didn't want.
7: But we'll still do it.
6: You know, all you can do is your best.
2: The search and rescue missions continuing after an explosion at a mine in northern China. At least 90 people have been killed, but around 9 are still missing. The Red Arrows will fly with just 7 aircraft rather than 9 for the majority of displays until at least 2030 because their engines are so old. The reduced formation will be in place until the MOD buys a replacement fleet. The richest game in football will take place at Wembley this afternoon. Middlesbrough have replaced Southampton in the Championship playoff final. They take on Hull City for a place in the Premier League. Victory is said to be worth an estimated £200 million. Hull owner Agan Ilajala says he just wants the club back at the top table.
6: I'm never concentrated in money in my whole life. If I was concentrated on money, nobody would buy a Championship team. Because in this business, it's not the business that you can make money.
2: And a 52-year-old Essex van driver has been handed a criminal conviction for tooting his horn to catch a friend's attention. Jamie Spence was caught outside Braintree Station last December. He pleaded guilty to sounding an unauthorised audible warning instrument on a vehicle and was fined £146. That's the latest.
0: Welcome back, Samin. जी हाँ, आप दाखिल हो चुके हैं, बल्कि हम सब मिलकर दाखिल हो चुके हैं प्रोग्राम के सेकंड आवर में, यानी कि दूसरे हिस्से में। इसमें भी इसी तरह से हम अच्छे अच्छे से गीत सुनेंगे, कुछ पोइट्री होगी, कुछ आपसे बातें होंगी, और ये आवर भी हम इसी तरह से गुजार देंगे। आपका और मेरा साथ रहता है 11 से 2 बजे तक एवरी सैटरडे। जी हाँ, मैं हूँ आपकी मेज़बान नाहिद चट्ठा, और हम मिलते हैं एवरी सैटरडे 11 से 2 तक। तो सामीन, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो। मैं न्यूज़ पे जाने से पहले आपको एक दफ़ा से फिर याद दिला रही थी कि आप सुन सकते हैं हमें 100.6 एफएम पर और 103.2 एफएम पर। डैप पर आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, लीड्स, हैलिफैक्स एंड मैनचेस्टर में, ईस्ट लंकाशायर में, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स में, और डाबी में भी हम जल्द ही अपनी नशरियात का आगाज करने वाले हैं। एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आप सुन सकते हैं ऑनलाइन हमें वेबसाइट पर, यानी कि www.sunriseradio.fm या फिर www.sunrise.radio पर। बढ़ते हैं अपने हिट ऑफ द आवर की जानिब, और उसके बाद आपसे होती है दोबारा मुलाकात। हमारे साथ रहिएगा।

0: चलो सजना, जहाँ तक घटा चले, आज तो घटा है ही नहीं, हाँ हाँ। तो ऐसा करते हैं कि हम बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। घटा वाला प्रोग्राम फिर सही। सनराइज रेडियो।
1: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, तो जी अपना लो या ठुकरा दो। तो क्या कहते हैं कि तुम्हें दिल में रखा था, तुम्हें दिल में रखा था, जरा सा दिल ही रख लेते, तुम्हें दिल में रखा था, जरा सा दिल ही रख लेते। समीर, इसके बाद हम बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गीत की जानिब। नहीं, पहले कर लेते हैं टाइम चेक, फिर गीत की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि फिर टाइम चेक में देर हो जानी है। की ख्याल है?
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: टाइम जनाब हुआ चाहता है हमारी स्टूडियो की घड़ियों पर 12:14, यानी कि 14 minutes past 12, क्वार्टर पास्ट 12 होने ही वाले हैं, यानी कि 12:15 होने ही वाले हैं। तो बढ़ते हैं पंजाबी गीत की जानिब नूर जहां की आवाज़ में, नसीम बेगम की आवाज़ में। छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी।

हाँ जी, छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, पुराना गीत है पंजाबी का और हमेशा हमेशा मज़ा देता है जब भी सुनो। ले पंजाबी दा गीत सी ते पंजाबी दी शायरी ते फिर बनती है। एंड हीरा खान जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टेलीफोन कॉल, अच्छा लगा आपने फ़ोन किया। बस पता चल जाता है कि कौन कौन से हीरे, कौन कौन से डायमंड्स और बहुत बहुत से अच्छे लिसनर्स हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। जब आप फ़ोन करते हैं तो थोड़ी सी सनद मिल जाती है कि कोई सुन भी रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। तो एक पंजाबी दे चंद लाइना तुहानू सुनानी है, उस तो बाद अगले गीत की जानब जाने। ए की चन चढ़ा दिता ई, ए की चन चढ़ा दिता ई, सानू ही मगरों ला दिता ई। ए की चन चढ़ा दिता ई, सानू ही मगरों ला दिता ई। तैनू अपना भेद की दसिया, तैनू अपना भेद की दसिया, तू तो रोड़ा ही पा दिता ई। किड्डी जालिम अख तेरी, हाय किड्डी जालिम अख तेरी, बंदा ही फड़का दिता ई। इस खूबसूरत से अशार के बाद बढ़ते हैं जनाब, बहुत ही एक खूबसूरत गीत जो कि मकेश की आवाज़ में है, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था।

हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। बहुत ही खूबसूरत गीत मंकेश की आवाज़ में आपने सुना, और बिल्कुल रेशम की तरह आवाज़ और इंतहाई खूब अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में क्या गीत को निभाया है। अगला गीत जनाब हम अताउल्ला खानी सखेलवी की आवाज़ में आपको सुनाएंगे। पंजाबी का गीत है। तारिक जुल्फी जी, आपकी टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल करने का, और आपके लिए ये गीत हम आपको डेडिकेट करते हैं अताउल्ला खानी सखेलवी की आवाज़ में। चिट्टा वेरू माल होवे, इंजॉय कीजिएगा।

वाह क्या बात है जी, माहिए वो भी अताउल्ला खान इस अखिलवी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत। सब पानी चीर गया विछोड़ा सजना दा साड़ी बन तकदीर गया, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत माही आपने सुने। उम्मीद है तारिक सुल्फी जी आपको पसंद आए होंगे। आपके लिए और तमाम सुनने वालों के लिए ये खूबसूरत सा ट्रैक मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। यार सुहाने पल करने आ, आजा बैके गल करने आ, गल सुन झगड़े हो जांदे ने, गल सुन झगड़े हो जांदे ने, बह के इहना दा हल करने आ, अज बस अपनी अपनी करिए, अज बस अपनी अपनी करिए, गैरां दी गल कल करने आ। जनाब इसके साथ हम अपने अगले ट्रैक की जाने बढ़ेंगे और वो है बहुत ही खूबसूरत गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। जी हाँ, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। सुनिएगा और इंजॉय कीजिएगा।

छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना जनाब। जो ख्याल थे ना कयास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए, जो मोहब्बतों की असास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए, जिन्हें मानता ही नहीं ये दिल वही लोग हैं मेरे हम सफ़र, जिन्हें मानता ही नहीं ये दिल वही लोग हैं मेरे हम सफ़र, मुझे हर तरह से जो रास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए। ये लम्हा भर की रफाकतों के शराब और सताएंगे, मेरी उम्र भर की जो प्यास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए। ये ख्याल सारे हैं आरजी, ये गुलाब सारे हैं कागजी, गुल आरजू की जो बास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए। अगला गीत सुनिए, चिंगारी कोई भड़के, किशोर कुमार की आवाज़ में, एंजॉय कीजिएगा।

0: अरे माझी जो नाव डबोए उसे कौन बचाए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। अब हम बढ़ते हैं टाइम चेक की जानिब।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: समय इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 12:45 यानी कि 12:45। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद आपका फ्लैशबैक गीत। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।
2: सनराइज रेडियो।
3: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
4: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
5: It's a classic hit. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

चोरी चोरी कोई आए, क्या खूबसूरत गीत आपने सुना, जो कि आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा गीत फ्लैशबैक के तौर पर आपने सुना। अगर तुमको भी एहसास मोहब्बत हो तो आ जाना, अगर तुमको भी एहसास मोहब्बत हो तो आ जाना, किसी टूटे हुए दिल की ज़रूरत हो तो आ जाना। हमारा दिल तुम्हारी याद में दिन रात जलता है, हमारा दिल तुम्हारी याद में दिन रात जलता है, तुम्हारी भी अगर ऐसी ही हालत हो तो आ जाना। ज़माना प्यार का दुश्मन तुम्हें आने नहीं देगा, ज़माना प्यार का दुश्मन तुम्हें आने नहीं देगा, मगर कोई आने की सूरत हो तो आ जाना। तुम अपने दिल के मालिक हो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते, तुम अपने दिल के मालिक हो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते, न जी चाहे तो मत आना, न जी चाहे तो मत आना, गर जी चाहे तो आ जाना। जनाब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, डफली वाले डफली बजा, एंजॉय कीजिएगा।

0: वेलकम बैक सामेन। खबरों के बाद आपसे दोबारा मुलाकात है। जी हाँ, हम प्रोग्राम के लास्ट आवर में दाखिल हो चुके हैं। लास्ट आवर में भी हम इसी तरह से गीत सुनेंगे, इन्जॉय करेंगे और आपकी आपसे बातें होंगी, कुछ पोइट्री होगी। पंजाबी की पोइट्री तमाम सुनने वालों के लिए और मुदस्सिर कहने जी, मैंने आपसे वादा किया था। तेरा नाम है दस के साढ़े, तेरा नाम है दस के साढ़े, कई बंदे में हंस के साढ़े। तेरा नाम है दस के साढ़े, कई बंदे में हंस के साढ़े, जिथे लोग उजाड़न आए, जिथे लोग उजाड़न आए, ओथे फेर में वस के साढ़े। की ख्याल है? बढ़ते हैं हिट ऑफ द आवर की जानेब। मिलते हैं हिट ऑफ द आवर के फौरन बाद।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with National Property Lawyers. One trusted team for your property and legal needs. Call 01274 559 565.

0: जी हाँ, तुम्हें दिल में बंद कर लूँ, दरिया में फेंक दूँ चाबी। बड़े जी खतरनाक इरादे हैं, बढ़ते हैं हम तो अपने कमर्शियल ब्रेक की जानेब। जिसने फेंकनी है फेंक के दरिया में चाबी, जिसने निकालनी है निकाले, है ना। चलें जी, हम कमर्शियल ब्रेक सुनते हैं।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुसले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

0: दे दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे जनाब ये तो आपने गीत सुना एंजॉय किया होगा टाइम चेक करते हैं
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक
0: जी सामिन इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियों पे हुआ चाहते हैं 1:15 यानी के 1:15 and 15 past 1 बढ़ते हैं अगले गीत की जानिब एंजॉय कीजिएगा

0: देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, लाइक रूठना तो पड़ता है, रूठे बगैर तो गुजारा नहीं है जी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एम खान साहब, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
0: सॉरी मैं अपना,
1: क्या हाल है आप?
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, मेरा आवाज़ आपको जा रहा है या नहीं?
0: जी जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। एम खान साहब की हाल है, तुहाडा तुसी ठीक हो?
1: बिल्कुल, मेरी बेटी तुसानी आवाज़ सुनी दे, दिल एक असल कर लिया, कर तुसानी आवाज़ सुनी दे, मैं एक नई जिंदगी मिल गई है।
0: आवाज़ दे विच मैं थोड़ी जी ना ब्रेकेज आ रही है तुहाडी आवाज़ विच।
1: अच्छा, हूँ देखो हूँ आवाज़ ठीक जा रही है ना?
0: हूँ आवाज़ मैनू ठीक आई है जी, बिल्कुल हूँ आवाज़ ठीक आई है।
1: आज का मौजू क्या रखा है
0: जी? मैं ए तुहाडे कोलो पूछना चाहनी हाँ, जे इंसान दा दिन बुरा जा रहा होवे, सारे काम खराब हो रहे होन, या वैसे ही दिल खराब होए, खफगी जी लगी होए, तो इंसान नू की करना चाहिए?
1: माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने मौजू रखा है। यानी जिस वक्त इंसान का दिल कोई सीधा राह छोड़ के किसी बुराई की तरफ जाने में ज्यादा दिलचस्पी रखता, यही है ना?
0: जी जी जी। नहीं, वैसे भी दिन अगर आपका बुरा जा रहा हो, अगर आपको कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो,
1: जब कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
0: जी
1: यही पूछा ना?
0: जी जी बिल्कुल यही पूछा।
1: एक फलसफी से, एक फलसफी ने एक दानिश्वर से पूछा
0: जी
1: कि अगर मैं आपसे कोई बात पूछूं तो मेरी बात का आप अच्छी तरह जवाब देंगे? फलसफी ने जब पूछा तो उस दानिश्वर ने कहा कि एक मुझे गारंटी दे दें
0: जी,
1: जो सीधी बात हो उस पर तुम्हें मानना पड़ेगा। कहने लगा ये तो मामूली बात है, ये तो मैं मान लूंगा। कहने लगा कि मेरा दिल जो है अच्छाई की तरफ नहीं जाता, खैरख्वाही की तरफ नहीं जाता, हमेशा बुरा ही सोचता है। और मैं कोई भी काम करता हूँ तो उस काम में सीधा नहीं हो सकता, हमेशा कोई ना कोई उसमें मेरे कामों में रुकावट बनती रहती है
0: जी।
1: तो दानिश्वर ने कहा कि ये इसका बड़ा आसान तरीका है कि तूने कहा कि बात मान लूंगा
0: जी,
1: आपने कहा कि जो आपका दिल है और उसको अपने कंट्रोल में कर लें। और कहने लगा ये किस तरह हो सकता है?
0: अच्छा।
1: कहने लगा कि आपका दिल जो है आपने सही राह को जैसे ही जो बिगड़ते काम है उसी की तरफ जाते हैं, जाता दिल जो माइल होता है वो सीधे काम करते हुए फूटे होते हैं। कहने लगा कि दिल की बात छोड़ दो, तो जो राह सीधा राह है उस पर इस्तकामत का इख्तियार करो, वो तुम्हें जिंदगी में जितने बिगड़े हुए काम है वो सुलझाओ की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आपने दो गानों में ही कहा कि नाराजगी हो गई है, आइए बैठिए, ये गुफ्त शरीर के जरिए हम इस मामले को बजाय उलझाने के उलझाओ छोड़कर सुधराने की तरफ हम तो ज्यादा तवज्जो करेंगे, ताकि हमारे सुलझाने से बहुत सारे काम बेहतर हो जाएंगे। तो उसके दिल में बात बैठ के कहने लगा ये तो बात आपने दुरुस्त की है, कि बात दुरुस्त कही है, जितनी बात गुफ्तगू शरीर में डिस्कस कर की जाती है वो उसमें से कोई ना कोई राह आदमी को राह मिल जाती है। मैं एक बात, वो पिछली दफा आपके प्रोग्राम में मैंने एक आदमी ने औजबिल्ला बिस्मिल्ला पढ़ा, मैंने बोला कि ये नहीं पढ़ना चाहिए, उसे बहुत मुझे जहन में न रखा, उसे बहुत ठीक काम किया, ये जरूर आउज बिल्ला ही पढ़ना चाहिए, ताकि बिस्मिल्लाह ही पढ़ना चाहिए, ताकि हर बुरे काम से उसको अच्छाई की तरफ ये नजरिया लेकर जाता है, फिर उसको गलत काम करने की तरफ उसकी तवज्जो माइल न होगी। और एक शेर में आपने कहा कि आओ रात के अंधेरे में किसी को पता ना चले, रात के अंधेरे में ख्वातीनों हजरात जो दिल की लो लगाते हैं
0: जी,
1: गर्म और नर्म बिस्तरा छोड़कर ठंडा पानी लेके बर्दाश्त करके वुजू करके खड़े हो जाते हैं अल्लाह की पाक बारगाह में, उस दिल को अल्लाह की जो नूर की कैफियत है उसकी तरफ नरम गर्म बिस्तरा छोड़ा, सारे आराम सब छोड़ के ऐसी कैफियत इख्तियार की जो उसके बिगड़े हुए काम थे वो भी सीधे होने शुरू हो गए। वो एक दफा एक शख्स बड़े दानिशवर की तरफ जा रहा था, तो वो चपली की बात वो एक गाने में आई, तो वो शख्स जो जाती था वो टूर रहा था, तो उसकी वो चपलियां लगी हुई थी, एक पीछे महबूब अपनी महबूबा के साथ चल रहा था।
0: अच्छा,
1: तो जो चपली वाला था वो अपनी टोर में टूटता रहा।
0: अच्छा,
1: तो जहाँ कीचड़ वगैरह फैला तो उसको कीचड़ से पिछले जो महबूब था उसके कपड़े कीचड़ से भर गए, तो उसने महबूब ने अपनी महबूबा के कपड़ों पर जिसको छिलक थी गंदगी थी तो उसे तमाचा मारा।
0: ओहो, अच्छा।
1: थोड़ी देर हुआ टोरा वो गिरा तो बाजू टूट गया, वो जिस वक्त टूटा तो उस वक्त उसकी महबूबा कहने लगी तूने उसको चपेट मारी थी, तो इसकी वजह से उस दरवेश की वजह से तेरा बाजू टूटा है, तो बेहतर उसे माफी मांग। जाकर उसे माफी ना मांगने लगा, कहने लगा मैं तो आपके लिए दुआ की थी, लेकिन जिस तुमने अपनी महबूबा की मोहब्बत में तमाचा लगाया तो मेरा जो महबूब था उसे फिर मुनासिब समझा, उसने उसकी सजा तब्दील की। वो दूसरा जो आपने गाने में था कि जब आंधी चले तबाही की बर्बादी होने के आसार पैदा हो जाएं, तो लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ है लूत आप और आपके चाहने वालियां चाहने वाले शाम के बाद इस घर ये इलाका छोड़े, पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे देखोगे तो फिर काम कुछ और बन जाएगा। उन्होंने यही तदबीर इख्तियार की, जितने उनके साथ चले थे वो सब बच गए। तो इसके लिए सीधी राह दिल का गुलाम नहीं होना चाहिए, वो पात्र शख्स है जो दिल की बात नहीं मानता, सीधी राह की तलाश रहता है, अल्लाह उसको हमेशा सीधी राह पर चलाता है और वो कामयाब होता है। बिगड़े भी कम सीधे हो जाते हैं।
0: बेशक
1: वो एक पंजाबी का शायर है, कहता है कदे सीधी गल्ला भी अच्छिया गल्ला होंदिया नहीं, कहने का आलमा तो फिर सबर करी दे सीधी राह ना रास्ता ना छोड़िया तू हमेशा कामयाबी हो सी। तो मैं अस्पताल में हूँ, मेरे टांग का ऑपरेशन होगा, आपसे सब सुनने वालों से दरखास्त है दुआ फरमाएं, जितने भी रुए जमीन पर इंसानों को अस्पतालों में है घरों में है बीमार हैं, अल्लाह सब कुछ शिफा फरमाए।
0: आमीन।
1: मैं आपका आपके सुनने वालों का शुक्रगुजार हूँ, मेरे सामने लर्ज खड़ी है उससे वो कुछ से कुछ दरिया से करके मैं माफी चाहता हूँ, बात खत्म करना चाहता हूँ। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो आप मुझे सब सुनने वाले माफ करें।
0: वालेकुम अस्सलाम। जी सामीन, ये तो हमारे थे कॉलर एम खान साहब, बहुत ही खूबसूरत बातें उन्होंने की और बहुत अच्छी बात उनकी कि उन्होंने अपनी गलती को खुद पहचाना और उन्होंने उसको रिकग्नाइज़ करके ये बड़ापन होता है इंसान का कि जब आपसे कुछ बात हो जाए और फिर आप उसको कहें कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, तो ये बहुत बड़ापन होता है। इससे इंसान की इज़्ज़त बहुत बढ़ जाती है और अल्लाह ताला इमरान खान साहब को जल्द सेहत कामला अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको जल्दी हॉस्पिटल से शिफा के बाद अपने घर में लेकर आए और वो हंसी खुशी चलते फिरते अपने पैरों पर अपने घर आए इंशाल्लाह। आप सब ने आमीन कहा होगा। एम खान साहब, मैंने आपके लिए दुआ की, जितने भी कानों ने सुना, हज़ारों लोग सुन रहे होते हैं, सबके दिल से आमीन निकली होगी, किसी की दुआ तो लगेगी इंशाल्लाह। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की जानिब और इस गीत पर जाने से पहले एक दफ़ा दोबारा से शुक्रिया अदा कर दूं एम खान साहब का। आपने बहुत ही खूबसूरत बातों पर रोशनी डाली है और उन्होंने कहा है कि दिल बुराई की तरफ जाता है लेकिन इस्तकामत और आपने दिल को समझाना, अपने जहन को सीधे रास्ते पर रखना, यही एक बड़ी जंग होती है इंसान के अंदर और ये जंग जो जीत जाता है उसके लिए आगे बेहतरी ही बेहतरी है, इस्लाह ही इस्लाह है। बेशक हमें कोशिश करनी चाहिए कि बेशक हमारा दिल चाहे चलो ये कर लेते हैं, दिल शरारत करता है, शैतान आ जाता है, लेकिन हमें अपने जहन से अपने दिल को समझाना है कि ऐसा नहीं करना, हमें सीधे रास्ते पर ही रहना है। तो जनाब अब बढ़ते हैं अगले गीत की जानिब।

दीवाना लेके आया है दिल का तराना। जी हाँ, इसके बाद सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, देखो मैंने देखा है ये एक सपना। एंजॉय कीजिएगा।

0: जी हाँ सामीन, ये तो आपने अच्छा सा गीत सुना और अब हम बढ़ेंगे अज़ान की जानिब और अज़ान सुनते हैं और उसके बाद मिलते हैं, बढ़ते हैं अज़ान की जानिब। अगर यहाँ पे हमें रिकॉर्ड में मिल जाए तो यहाँ पे तो हमें अज़ान नहीं मिली रिकॉर्ड में, आप डेफिनेटली उन्होंने कहीं रखी होगी और मुझे नज़र नहीं आई। तो ब्रेडफोर्ड और उसके मज़ाफ़ात में ज़ुहर की अज़ान का वक्त हो चुका है। आप अपने मुकामी वक्त के मुताबिक जहाँ पे लोग सुन रहे हैं ज़ुहर की अज़ान, ज़ुहर की नमाज अदा फरमा लें। बढ़ते हैं हम टाइम चेक की जानिब और टाइम चेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा उसी तरह से बढ़ेंगे कमर्शियल ब्रेक, और कमर्शियल ब्रेक के बाद गीत होंगे।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: सामने इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 1:42 यानी कि 42 मिनट्स पास्ट 1। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

जी सामिन वेलकम बैक, आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना, उम्मीद है इंजॉय किया होगा कि तुम अगर साथ देने का वादा करो जी, वादे की तो सारी बात है, वादे की ही तो सारी बात होती है और वादे से उम्मीद बनती है और उम्मीद पे दुनिया कायम

0: दिल दे के तगा देंगे, यार है मतलब के। और ये देंगे तो क्या देंगे, ऐसे यारों का क्या फायदा, इससे तो अच्छा है इंसान अकेला रह ले। जी सामीन, ये अच्छे अच्छे से गीत, ये अच्छी अच्छी सी बातें, आपकी टेलीफोन कॉल्स, हमारी पोइट्री, ये सब 3 घंटे का जो सफ़र था बहुत खूबसूरत था। अब हम बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब, और आप सबको मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद की खुशियां मुबारक हों, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो ईद गुज़र चुकी होगी। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, ईद को मनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तमाम उन बहन भाइयों का, तमाम दोस्तों का जिन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, टेलीफोन कॉल्स किए और प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाया। जनाब क्या कहें, दुख अगर अपना हमको बताना नहीं आता, दुख अगर अपना हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाज़ा लगाना नहीं आता। मैं भी उसे खोने का हुनर सीख न पाया, मैं भी उसे खोने का हुनर सीख न पाया, उसको भी मुझे छोड़ के जाना नहीं आता, उसको भी मुझे छोड़ के जाना नहीं आता। जी सामीन, लेकिन छोड़ के जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जाएंगे तो ही अगली बार आएंगे। जनाब इसके साथ ही इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, और नाहिद चट्ठा को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज़ रेडियो। हमारे बहुत बहुत अच्छे से प्रेजेंटर्स आपकी खिदमत में प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं, और डेफिनेटली हमारे लिसनर्स भी, दे आर वर्थ इट। वो आपके लिए ही हम आते हैं, इतने इतने अच्छे आला ख्यालात रखने वाले लोग हैं। हमारी इज़्ज़त अफज़ाई होती है कि जब आप हमें बताते हैं कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। जनाब इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी, बढ़ते हैं न्यूज़ की जानिब। न्यूज़ के फौरन बाद आपके गीतों का सिलसिला जारी रहेगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Centre, it's 2. Enhanced EU border checks have been paused at the port of Dover after huge queues built up. Some passengers had been waiting to get through for almost 5 hours. That's reduced to around 3 now. Young people are part of an anxious generation whose ability to work has been damaged by their reliance on screens. That's according to a former health secretary who's behind a review into the numbers of young adults who aren't in education, employment or training. Alan Milburn's interim findings will be published next week. Our political correspondent Lucy McDate says this investigation is significant.
3: The big takeaway is finally making that link between social media use, smartphone use and young people being out of work. Milburn expected to say in this interim report out next week that this isn't a generation that are faking it, this is a generation that needs more state support.
2: Today could be the hottest day in May on record if temperatures surpass 32.8 Celsius. There are amber heat health alerts in place across the Midlands, East and Southeast England. Hull City's team bus has been damaged ahead of today's Championship playoff final at Wembley. A window was broken after objects were thrown at the coach. Hull's players are preparing to face Middlesbrough for a place in the Premier League. Their original opponent, Southampton, were kicked out of the match for spying on rival teams. These Hull fans aren't fazed by the change.
4: We've obviously been preparing for a completely different squad, but I think we'll be fine as we are.
5: I feel like we've both had the same amount of time to train. I feel like it's going to be an even game, and one goal will decide it, I reckon.
2: Premiership champion Celtic go for a record-extending 43rd Scottish Cup title this afternoon. They're hoping to avoid an upset against Dunfermline in the final at Hampden Park. And Sir Jeremy Hanley, who chaired the Conservative Party while John Major was Prime Minister, has died at the age of 80. His family say he died yesterday at Torbay Hospital after a short illness. That's the latest. I'm Cam Hall.

0: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
3: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रैडफोर्ड 7230303

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

Hey girls, आदमी मैं अच्छा हूँ, दिल का भी सच्चा हूँ, but but I am a flirt.

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288

में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

0: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: 24 hours a day.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: Papa ji.
5: हाँ जी आयशा।
4: तुसी गाना लाओ।
5: केड़ा गाना पुत?
4: You know.
5: Which one?
4: Rambo.

0: बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं।

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

झूठे कसमें वादों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से नफरत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

लाओ भी दोस्तों अपने छोटे वीर रूपन कालों के संगीत विच कुछ वखरे अंदाज विच पेश करन जा रहे हैं पंजाब दे कुछ लोक बोलियां तो हाड़ा अपना

दा राह नवा खुल गया, तू भी भुल जा मैं भी भुल गया, पर मेरे अंदर वसदे आशिक दे दिल नू एक रोस है, खास जइए तेरे आम जहे नू आही अफसोस है, आही अफसोस है, आही अफसोस है।

कभी कभी हम एक दूसरे को खोकर भी तो प्यार को ऊंचा दर्जा देते हैं, जुदा रहकर प्यार की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। हर प्यार मिलन तो नहीं, जुदाई भी तो एक प्यार है।